करो प्रतपार हमरे दुष्ट स्वभाव तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वभाव करतारा।

हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करी और अच्छा राख ले हो मोह राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बान दुष्टन के हंता तमोह पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल योगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दया जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाध्य कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला

जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम।

संबत सत्रह सहस पणिजा अर्ध सहस फुण तीन के हिज्जा भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चित्रोपखयाने त्रिया चरित्र मंत्र।

ओहरा जब आए स प्रभ को भयो जन्मत राजग आए अब मैं कथा छिनछेपते सबहू कहत सुनाए कब वाच दोहरा ठाट भयो मैं जोर कार बचन कहा सिर न्याय पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते अहं संत अंत लहेंगे मुगत फाल

ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई। तरस पाया मेहरामत होई सदगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया। तरस पाया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया।

0: गुरु प्यारे गुरु सवारी इतनी हाजरी प्रवान करनी भुला चुका दी खिमा बुलाओ पते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद पैसा पै सुरजीत सिंह जी कुहाड़का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर साहब वाले उन्होंने सत्कारयोग रागी जथेदार जिन्होंने आप संगत नूं आरती आरता शब्द कीर्तन के द्वारा निहाल किया है। हुण सत्कारयोग ज्ञानी बलविंदर सिंह जी मुख ग्रंथी गुरद्वारा जामनी साहब वाले आप संगत नूं कथा विचार के द्वारा निहाल करनगे। 16 जुलाई तो सत्संग जी जो मेरी प्रिय समागम आरगम होणगे जो पहले दो दिन कथा दरबार सजेगा 18 जुलाई तो 22 जुलाई तक शाम के समय ढाडी तकवीशर दरबार सजनगे। 23 जुलाई तो 2 अगस्त तक कीर्तन दरबार सजेगा। 1 अगस्त नूं सत्संग जी सालाना नगर कीर्तन है सवेरे 9 बजे गुरु चरणा विच अरदास बेनती करके नगर कीर्तन की आरंभता होगी। 2 अगस्त नूं सवेरे 6 बजे खंडे बाटे दा अमृत संचार होवेगा। सो सत्संग दी आप संगतां ने सारे ही समागमां विच हाजरियां भर के सेवावां करके लाहे प्राप्त करने जी। नगर कीर्तन विच सत्संग जी सुक्का प्रसाद कड़ा प्रसाद दे वास्ते देसी घिओ अते डिस्पोजल बर्तनां दी सेवा गुरु घर विखे जरूरत है। आप जी समर्था दे मुताबक कर सकदे हो। हुण लंगर हाल दे विच प्रसादे पकाउण दी सेवा अपने समय अनुसार करके सत्संग जी लाहे प्राप्त करने जी बेनती प्रवान करने जी। आओ हुण कथा विचार दे नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: करना, पराए दे उपर भला करना, ए मन दे विच चितवनी कर रहे हन।
1: तीर्थ प्रगटै पावन कोई।
0: महाराज जी ने मन विच विचार कीती कि जेडे अकबर बादशाह पिंड दे के गया है, उथे कोई वड्डा तीर्थ जेड़ा ओ प्रगट

गुरु की सादी निवादी गुरु का खास स्वरूप साध संगत जी धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा मेहर अहमद का सदका सतगुरां दे हजूर सुंदर दीवान सजे हन सजे दीवाना अंदर आप संगतां रबी बाणी धुर की बाणी अकाली बाणी का पाठ बोध सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी ने महान तरस किया है। हुण तक आपां 720 अंक सतगुरु जी की पावन बाणी दे पढ़े सुने हन। अज साध संगत जी 721 अंक तो धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। तिलंग राग की रंभता हो रही है। महामंत्र उचारण करके सतगुरु जी कृपा करते हैं। शब्द की ब्रह्मता हो रही है। जक अर्ज गुफ्तम पेस तो जक अर्ज गुफ्तम पेस तो दर गोज कुन करतार हक्का कबीर करीम तो बेऐब परवदगार। इथों पावन शब्द प्रारंभ।

उच्चारण करना मिर्ग मैं, इदा ही उच्चारण करना मिर्ग मेर गम है, उच्चारण नहीं करना मिर्ग मैं, जिवें उच्चारण किया ज्ञानी जी ने केसर कुसम मिर्ग मैं हरणा सर्व शरीरी चढ़ना चढ़ना पाठ पारा करना।

0: जिनके चोले रत्तड़े प्यारे कंत तिना कै पास।
1: रत्तड़े पाठ भी कस के करना रत्तड़े।
0: धूड़ तिना की जे मिला जी कहो नानक की अरदास।
1: इस पंक्ति का विश्राम भी याद रखने वाला है। धूड़ तिना की जे मिला जी कहो, कहो पाठ ते आण के विश्राम लाउणा, मिला पाठ ते जमक लाउणी। कई गुरमुख जी पाठ ते विश्राम लाउंदे हन, ओ अर्थ दा अनर्थ हो जांदा है। सो साध संगत जी कहो पाठ ते आण के शुद्ध विश्राम बणदा है।

0: हजार आलम इथे विश्राम ला के एक लखाना, एक लखाना पाठ पोथियां च लिखती रूप विच हुण लिखण लग गए हन, पर संप्रदाय पाठ है एक लखाना। जेड़ा लल्ला है ओ खाना दे नाल जोड़ के ते एक अलग करके उच्चारण करना, चंदी हजार आलम एक लखाना।
1: आसपात गाजपात नर है नरेंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद, राग सूही महला पहला।
0: सूही राग दी रमता सतगुरु जी दी कृपा सदका हुई है, विशेष ध्यान दे के श्रवण करना। ए बाणियां हुक्मनामा साहिब जादे आउंदी है।

कौन गुरु इथे जम कला के कौन गुरु कै पह दीख्या लेवा लेवा पाठ से विश्राम लाना कई बार दीख्या पाठ से विश्राम असी ला जाने हां पर शुद्ध लेवा पाठ से है कौन गुरु कै पह दीख्या लेवा कै पह मुल करावा।

0: जाय। हर धन कहो उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई।
1: उचक्का ऊड़े नू अगेतर ला के, हर धन कहो उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई।
0: साकती पाप करके बिख्या धन संचया, तिना एक विख नाल ना जाई।
1: विख पाठ कसके करना, विख पोला नी उचारण करना।
0: हलते विच साकत दुहेले भये, हथो छुड़क गया अगै पलत साकत, हर दरगह ढोई ना पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो, जिसनो दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोझी पाई। सूही महला चौथा, जिसनो हर सो

0: त्रै गुण रोगी त्रै गुण पाठ संबंधक रूप दे विच इकट्ठा करना लिखती रूप इकट्ठा नहीं पर त्रै गुण त्रै बोल के गुण बोलन ते ज्यादा टाइम नहीं लाउणा ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी इथे विश्राम विच होमै कार कमाई
1: जिन किए तिसहन चेत है बपुड़े हर गुरमुख सोझी पाई होमै रोग सब जगत व्यापिया तिनका जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन का हाओ बलिहारी जिन शिष्ट साजी

पंच तात कर तुद सृष्ट सब साजी कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै इकना सतगुर मेल तुम बुझावै एक मनमुख कर है से रोवै हर की वड्याई हौ आख न साका हौ मूर्ख मुगध नीचान जान नानक कौ हर बख्श।

0: प्रकाश सब कुछ मुनजर आम दे कर देंदा है। ए पहाड़ ने, ए शहर ने, ए बनस्पति है, ए बाग है, ए जंगल ने, ए मनुख ने। अंधेरा हो जाए और एक घर विच कोई 50-60 फर्द बैठे होन, हुण अंधेरे च नहीं दिखाई देगी भैण कौन है ते पत्नी कौन है, मां कौन है ते पिता कौन है। अंधेरा ऐसा है दूजे नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा, अंधेरे च अंधेरा ही दिखाई देंदा है और कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। जद अंधेरा आउंदा है अंधकार दूसरे दी होंद नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा। अंधेरा कहिंदा है बस मैं। अंधेरे दे सामने हजारां चीजां छुप के रह गईयां। सब तो भयंकर रोग है अंधकार, और अंधकार है अहंकार। अहंकार दे सामने ते निरंकार भी ओले हो जांदा, नहीं दिखाई देंदा। बड़ा प्रबल अंधकार। भारत ने बहुत प्राचीन काल तो महसूस किया है मनुख दी जिंदगी विच इक्को ही त्योहार हो सकता है और नहीं, बाकी सब वक्ती ने। इक्को ही त्योहार महान है, केड़ा? दिवाली। दिवाली चानना रोशनी। और मनुख दी जिंदगी विच इक्को ही बदकिस्मती है कि अमावस मस्या अंधेरा। दिवाली मस्या दी रात नूं आउंदी है। पूर्णमासी दा चंद्रमा खिड़िया होया, दीवे जलाने दी लोड़ ही की है? दीवियां दी महानता अमावस दी रात जो है बनती है। मनुख अमावस है, अमावस सज सकती है, अमावस भी श्रृंगारमयी हो सकती है, अमावस भी दुल्हन बन सकती है, बशर्ते प्रकाश दा राजा आ जाए, प्रकाश दा दुल्हा आ जाए। तो ये अमावस भी श्रृंगारमयी हो सकती है, प्रकाशमयी हो सकती है, सजी हुई दुल्हन हो सकती है। बार से मनुख ने ऐसा यतन किया है अमावस नूं हजारां दीवे जला के रोशनी करन विच ये सफल हो गया। सब तो वड्डा त्योहार हो गया दिवाली। पर जीवन जो स्वयं मसिया दे च है, जमिया मसिया दे च, जीविया मसिया दे च, मरिया भी मसिया दे च। पता नहीं कितनियां दिवालियां भी मनुख व्यर्थ कर चुके हैं। कुछ नहीं प्रेरणा ली, कुछ भी नहीं प्रेरणा ली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मनुख है ते तू दीवा, पर करिए कि बुझे होया है। ते बुझे होया क्यों है? इतने जल्दे दीवे ने, कृष्ण दा दीपक, एक दीपक दा ना कृष्ण, एक दीपक दा ना राम, एक दीपक दा ना गुरु नानक, एक दीपक दा ना मोहम्मद साहब, एक दीपक दा ना ईसा, एक दीपक महात्मा बुद्ध, एक दीपक ने स्वामी महावीर। पता नहीं कितने दीपक। और एक आम कहावत है कि दीवे नाल दीवा जलाया जा सकता है। जलदा होया दीपक ही बुझे दीपक नु जलंदा है। पर जलदे दीवे सारे नाकारा साबित हो जाते ने जब दीवे च तेल ही ना होवे ते वट ना होवे, की करनगे? जलांदे रहने ना बुझे हुए दीवियां नूं ते अवतारी पुरुष उन्हां दी रोशनी इन्हां नूं रोशन नहीं कर सकी, क्योंकि दीवियां च तेल नहीं सी, वट नहीं सी। हर अवतार किसे हद तक नाकाम होके जगत तो गया है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। मनुख दे अंदर जिहड़ी दुष्टपणा बिरतियां ने, इन्हां सारियां दी मैं जड़ां पुटनियां ने, सारा अंधकार नाश करना। कवि तुलसी भी कहते ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, अरे कृपा निध सज्जन पीरा। जद जद अधर्म दी हानि आउंदी है, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਭ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਐਸਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇਹੇ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦ ਘੋਰ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਧੇਰੇ ਲਈ ਜੀਵਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਟੱਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਜਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਝਾਓ, ਬੁਝਾਓ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਇਹ ਦੀਵੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਤੇਲ ਸਵੈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਵੱਟ ਸਵੈਮ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾਨੂਸ ਬਨ ਕੇ ਜਿਸ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਕਬ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਪਰ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਅਗਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿਚ ਇੰਝ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈਏ, ਸਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਆਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਤਨਾ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਇਹ ਬੋਧ ਜਗਤ ਪਰ ਧਮ ਪਦੋ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੈਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਚਿਰਾਗ, ਇਤਨੇ ਚਿਰਾਗ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਮੰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮੰਨੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। जी गुरु नानक मैथों पिछे ही ने, मेरे अगे नहीं ने, तो मैं क्यों उन्हां दी गल मना, क्यों उन्हां दी गल मना। मैं देखदा हां मनुख ने राजनैतिकां नूं भी अगे रखिया है, उन्हां दी गल भी मन लैंदे ने। मनुख ने परिवार नूं भी अगे रखिया है, पत्नी दी गल भी मन लैंदे ने, और पत्नी पति दी गल मन लैंदी है, भरा भरा दी गल मन लैंदा है। इंज कह लो मनुख ने परिवार अगे रखे होया है, राजनीतिक लोगों नूं भी अगे रखे होया है। मनुख दी जीवन भर दी चेष्टा ते यही है, हर अवतार नूं अपने पिछे ही खड़ा करो, जिस जिस पासे असी चल रहे हैं उस पासे चलन। जबकि अवतार कहिंदे ने जिस पासे असी चल रहे हैं उधर चलो, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अगर अवतार मनुख दे पिछे चलन लग पे तो फिर अवतार अवतार नहीं है, अगर मनुख मनुख दे पिछे चलन लग पे तो मनुख मनुख नहीं है, तो देवता है, ये तो फरिश्ता है, ये तो महान हो गया। लेकिन देखन दे चाया है पत्नी पति दे पिछे चल सकता है, पति पत्नी दे पिछे चल सकती है, भरा भरा दे पिछे चल सकता है, संसार राजनैतिक दे पिछे चल सकता है, मनुख अवतार दे पिछे नहीं चल सकता। जबकि अवतारां दी कोशिश है साड़ी आवाज दी सेध, चले आओ पहुंच जाओगे घर तक। तो साहब कहंदे ने धर्म ग्रंथां नूं मन लेना, ते मन के उन्हां नूं हिरदे विच धारण करके उन्हां दा पाठ पठन रोजमर्रा करना, ए तेल पाना है दीवे विच। भव वट्टी इत तन लाईए, भावना दी वट प्यार दी बाती ला। जिसनों रोज रोज याद करिए पाठ दे राही बाणी दे राही, आखिर याद एक दिन ते प्यार बनेगी बनेगी, याद ही प्यार बन दी है। इस दिते मैं उदाहरण देना हुना, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनता है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है, प्यार बन जाती है। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई, एक दिन प्यार बन जाती है। तो पाठ करना धर्म ग्रंथां दी इस रचना नूं, इस बाणी नूं मनना ते जप करना, ए तेल पाना है। पढ़ना ते जपन विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनू याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ए बोल है, पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप हो जावां। जपन लग्या बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनू कहंदे ने कि जबान उचारण करे ते फिर मन सुने, पढ़ना उसनू कहंदे ने मैं सामने देख रहा ध्यान बाहर है, पर जपना उसनू कहंदे ने हुण ध्यान अंतर्मुखी है, हुण सुनना आरंभ हो गया। मैं पढ़ना इस वास्ते बाणी दी समझ पै जाए, मैं जपना है इस वास्ते कि मैं बाणी दा रूप हो जावां, प्रकाशमयी हो जावां। पोथी पुराण कमाईए, सच बूझण आण जलाईए, ए तेल दीवान साहेब ले मिले। जैसे तो भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा, और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा, यकीन जानो जिस भी अवतार दी शमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाएगा, प्रकाशमयी हो जाएगा। सारे रोग भज जाणगे, अंधेरा ही रोग है, अंधेरे दे नास होंदिया होया सारा स्वप्न उजागर हो जाएगा, सारी दौलत तेरे सामने आ जाएगी। पर अंधेरे दे होंदिया होया सारा स्वप्न डक जाएगा, सारी दौलत ते पर्दा पै जाएगा, सारे सुखां ते पर्दा पै जाएगा, सारे आनंद ते पर्दा पै जाएगा, और अंधेरा रोग दी तरह भयंकर भटकना दी तरह ठोकरां दी तरह तेरे सामने आ जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे ही चानने दी औषधि समस्त संसार विच वंडदे रहे, और कहिंदे रहे अंधेरा रोग है, अंधेरा रोग है, रोशनी औषधि है, ज्ञान औषधि है। इस वास्ते हर बशर दी रसना तो निकलिया, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। साहिब कहिंदे दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वेर। संसार दे चितनियां औषधियां मौजूद ने, पर दुख मौजूद ने, रोग मौजूद ने। कारण औषधि एक रोग नू दवांदी है, दूसरे नू पैदा कर दी है, दूसरे नू दवांदी है, तीसरे नू पैदा कर दी है। इस सच्चाई नू हुण डॉक्टर वैद कबूल करन लग पए ने। ठीक है, जिस रोग दी पीड़ा हो रही है उस रोग नू दवा दिता, और जितनी मिकदार दे चे पीड़ा एक रोग दबदा है इतनी मिकदार दे चे दूसरा रोग पैदा होंदा है, ओदी पैदाइश होंदी है। तो सारा जीवन रोग विच बतीत हो जांदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने एक ऐसा दारू भी है, ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ने रोगां घाण। ये रोगां दा सारा कहानी खत्म हो जांदा है। जन्म जीवन ते मरण ते नहीं मिट जांदे ने, यही रोगां दा खाण है, यही रोगां दा इकट्ठ है। और ये सारे दे सारे नाश हो सकदे ने आत्म प्रकाश नाल, आत्म चिंतन दे नाल। सारा अंधकार दा रोग खत्म हो सकदा है, और जिंदगी एक महान दिवाली बन सकदी है, प्रकाशमय हो सकदी है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तारो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो।

पालना, दयालता, सिख दी परवरिश, ओदी दुरमत दा नाश, गुरु दे बचना नल ओनू उचारना। साहिब कहिंदे सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते खाटे। फिर सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। नाम धन दी प्राप्ति हुंदी है, गुरु दा सिख वड्डियां भागां वाला हो गया। साहिब कहिंदे सतगुर सिख का खालत पलत सवार है, लोक ते परलोक सवार दे ने सतगुरु अपने सिख दा। सतगुर सिख का खालत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी ना। इथों फिर अगे तुरने जी नाल संवार दे ने। फिर बेनती के शरीरक तौर ते भी संभाल दे ने, डोलन तो बचांदे ने। कली आत्मा दी गल नहीं, जे जोगे वर्गा हुक्म मन के तुरदा ते मन खिंडदा है, एक चितमनी हुई सी ना, ते सच एवे गुरमुखो, ए ता खौमे दा फुरना ही एक ऐसा है। जिद्दन किसे नू दसे भी ना बंदा, ते तुरदियां फिरदियां अपने जीवन दा अपने कम्मा दी खौमे दे फुरने बना लग पे, वो एहो जी अग ने के अंदरो अंदरी साड़ दिंदे ने। दूजा दिन की कुछ समय तो बाद ही उहदा नतीजा सामने आ जांदा। कांजी दियां बूंदा पहन दुध फट जांदा है, निक्की जी चिंगारी लग जाए ते रूह सड़ के राख हो जांदा है। प्यारियो सूक्ष्म फुरने ते ता सथूल ही निखौमे छड़ दी, सूक्ष्म दी ता गल जे दूर दी, बार मुखी सतूल खौमे नहीं छड़ दी। सतगुरु कहिंदे ने कई बारी ज्यो ज्यो गुण हुंदा है ना, त्यों त्यों खौमे भी नाल प्रबल होण लग पैंदी। बोर्ड दा रुख है ना, जदों छोटा है वह कोमल है, जिस पासे चुकावांगे वह मुड़ जाएगा, पर जिदा कुछ सालां तो बाद वह वड्डा हो गया, फिर हलाम दी गल तां छड्डो, उहदियां टाणा विचों भी जड़ धरती उत्ते परलण लग पैंदी, वह निकलदियां ने बाहर। कई बारी तुरदियां बंदा जदों तुरदा है ते अक्सर ओदी खौमे सूक्ष्म रूप विच थोड़े रूप विच है, पर जदों कई बारी बहुत ज्यादा गुण आ जांदा है, खिमा करियो खौमे उस तो ज्यादा प्रबल हो जांदी है। जो सतगुरु ने बाणी च कहा, ते इस कथा दा मतलब ए नहीं कि मैं 2 फुट उच्चा बैठा ते केवल आप जी लई, ए मेरे लिए। ताई साहिब ने कहा कि देखो इन्नी प्रबल है, हम बड कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते, ए बुद्ध कब है ना नासी। सतगुरु शरीरक तौर ते भी जे फुरने ही उठदा भाई जोगे दे अंदर फुरने ही उठिया ना, ते वो कोई माड़ा ते नहीं सी ना। उन्हें क्या मैं गुरु दा हुक्म मन्या, देखो उस फुरने ने किथे लै हुंदा। जे शुकराना करी जाए मन के मालक तू हुक्म मनाया, पर वो फुरना बनिया, उस फुरने ने किथे लिया खड़ा कीता, पर सतगुरु सज्जन इन्ने संभालण वाले, उन्होंने अपने सिख दी शरीरक तौर ते भी रखवाली कीती, उन्हों कृपालु सतगुरु ने डिगदे होए नू तिलकदे होए नू आप हाथ दे के बचा लिया। प्रतपालनी कीती भाई विधि चंद जी की गल चल रही सी दुशालिया दी, अज भी भट्ट साहिब स्थान है, भावना जिथे आ जाए उथे तर्क नहीं, वह भट्ट विच वड़दे ने, हजूर उपर जल पै रहा है, शरीरक तौर ते अग विच पए हुए सिख नू भी सतगुरु तत्ती वार नहीं लगन देंदे। महाराज कहिंदे ने सतगुरु अपने सिख नू जिंद नाल संभालदे, ओदी लोक परलोक सहायता करदे। इस तो अगा थोड़ा जिहा बाणी चो देखिए, उंज जे असी धन गुरु नानक साहिब आदि गुरु ने, पर जो उन्हां ने अपनी रसना तो शब्द कह बाणी उचारण कीती, सानू सारिया नू यह गल कही कि गुरबाणी गुरु है, क्योंकि आना है कि गुरु सज्जन कौन है। अज दे परपेख भी जे कथा करांगे ते गुरु सज्जन दी गल आके गुरु ग्रंथ साहिब जी ते मुकेगी, सिख दी गल आके शब्द ते मुकेगी, गुरबाणी ते आपां आके टेक रखांगे। गुरु सज्जन जिंद नाल तुरदे, शरीर नाल समाज तुरदा, शरीर नाल जदो जिंद निकलदी है लोक तुरदे ने, पर कई बारी दास बेनती करदा है

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित कितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप त्रैलो कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजे
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजे
1: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आप जंजाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊत पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ए पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्त शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुख मनी
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुख मनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: Ek Oankar Satgur Prasad Asa Mahalla Chautha Shant

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फेरे जंत विस्माद पौन समाद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साज लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद शिव तुष्माद सला विस्माद।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

0: काल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों बेदाल जे को तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा को रे रंग ना सोए पैवज खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: मोहल्ला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठन कोई आख है पत प्रवण पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे
1: पहला जिसमान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: तुवा पुरा तपे का सत गिर बाहो कलजुगरा थगन का कूड़ा गैर रुतवा हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पग करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल रिहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजोग

जत हर सब सब चार हजार कदे कै श्री भगवान भजे बिन भूपते करती बिन एक न लेख्या।

सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद किया घट घट के अंतर की जानत भरे बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंच रस थूला सपर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पढ़ पढ़ की जान जब बोध करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार जेते बदन

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

प्राप्ति कृतवा हो। जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुझे ताहे, सत जुर संतो का धर्म गिरत बाव त्रित है, रथ जताय का जुर गिरत बाव।

ब्राह्मण को कर लाभ गोवर्थन ना जाय। तोती टिका तैजा माली धान लिछा खाई अंतर पूजा पड़िक ते बां संजम तुका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय तुलंदा महला पहला।

और श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर आए। श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठे शब्द हो जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नदावै ताए। सब थाए होए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाए होए सहाय। दसह पातशाह की जोत।

चन परसे गुरु पे जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसाम दी नूर अरसों पुरसों चटी उद सचे पात सा मल जन्म

0: तेजी सब्जी फल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

0: तेजे सब्जी भले खाना है, रोटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: तरले भरा एक शब्द जोदड़ियां नाल लिबड़े आया एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़ क्यों मैं चल नहीं सकदा क्यों नहीं चल सकदे हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी करने का कर सकता एक कदम चलेगा दो कदम चलेगा तीसरे ते डिगेगा लाजमी डिगेगा लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है बच्चे नु चलना आ गया प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है चलो एक कदम ही सही चलिया ते है एक कदम चल चलना एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है तू एक कदम चलते सही वाट लखां को दी है चिंता न कर कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए अगर एक कदम किसी बच्चे ने उठाया है तो गल स्पष्ट हो गई चलन दी जांच आ गई ये चल पे जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना मां नू चिंता हो जाती है पिता नू पीड़ा हो जाती है ले जांदे डॉक्टर कोलों हो गया तीन साल दा हो गया चार साल दा पैर नहीं पुटदा तीन चार वरियां दा हो गया अजेज दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया कहंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है मम्मा अखर पहले निकलता है मां मां ये पहला करण लग पैंदा है मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया है बुजुर्ग नहीं होया मां कहना आया है वाहेगुरु कहना नहीं आया जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसदा नां ते निकल आया एदी जबान चो भावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कढवांदी है चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे परशियन होवे अरबियन होवे चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है मां मां मां और जे जिंदगी दा अंत होवे ते आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जीवन यात्रा सफल हो गई जगत ते आया सफल हो गया मां ते निकलिया और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां ये बच्चा बच्चा रह गया अगे नहीं जा सकया तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु मैंने बोलन दी जांच नहीं आई तेरे बोल मैं सुन सका ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਪੈਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਪੈਰ, ਇਹ ਕਲੱਬ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਣ। ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਪਤੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਾਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੈਸਾ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ, ਸਭੇ ਸਾਖ ਕੁੜਾਵੇ ਦਿੱਥੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਦੇ ਲਾ ਗਈ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ, ਇਹ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੁਜ ਬਲ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸਰਵਨ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟੁਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਲੋਭ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਮਤਾ, ਮਮਤਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਅਧਪਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੋਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੋਂ ਦਇਆ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੀ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, भुजबल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेओ अंगुरिया सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज संसार दी आवाज किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने बहरे ने हर एक दे कन बहरे ने आवाजां सुन रहे ने ऐसी गल नहीं है। समुचे परिवार दी आवाज सुन सकदे ने संसार दी आवाज सुन सकदे ने निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं और। ए परिपूर्ण परमात्मा जितनियां भी आवाजां मेरे कन्ना च पै रहियां ने पंछियां दियां पशुआं दियां मनुखां दियां बदलां दी गर्जन पवन दी शांशा मैनूं ते इंज लगदा है इह तों ही बोल रहे हैं। सब तेरी आवाज सब तेरा नाद सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने मेरे कोलो कन भी नहीं मेरे कोलो जबान भी नहीं मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसी दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे उसदे घर दे ची सिक्का चलदा है ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलदा। इदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने बाहर दे नहीं इदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले सारे कलोनी चल जांदे ने मन लैंदी है समुची वसनीक उसके बचना उसके बोलों नू मन लेंदी है सुन दी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे भी पहुंचते हैं उत्थे भी सुने जाते हैं। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च इक कद खुशकिस्मत इंसान जिसके बोल निरंकार तक पहुंचते हैं और सुनदा है निरंकार उसके बोल परमात्मा नू भी सुनने पैंदे ने उसके बोल ईश्वर नू भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने वो जबान में कितों लेवा जिड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके वो कन में कितों लेवा जिड़े तेरे बोल सुन सके वो नेत्र में कितों लेवा जो तेनू वेख सकन और हत्था दी ओ मैं पकड़ कितों लेवा जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कुल तो पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रेश दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रेश दे कोलों खो लईए फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा क्योंकि उहदे कोल हाथ पैर नहीं ने। पत्थर नहीं बोल सकता पत्थर सुन नहीं सकता पत्थर वेख नहीं सकता पत्थर सुंग नहीं सकता पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता पत्थर सोच नहीं सकता। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर जिवें पत्थर नू कोई बोध नहीं पत्थर दे च कोई गति नहीं पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनू ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी ओ जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतियां ने बर्दाश्त कीता चलो खैर सुन दे पया चलो मुंह साडी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साडे तक पहुंचदे ने। लेकिन एक दिन स्रोतियां ने बेनती कीती फकीर साईं ऐसा क्यों कर दे हो जद सानू सुनाण वास्ते ही तलावत कर दे हो जद सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज देंदे हो फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो पिट साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਦ ਵਿਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਦੀ ਲਗਭਗ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਸਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਨਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਹਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂ ਸੋਨਿਓ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਓ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਧਰ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਇਧਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਤੋ ਕਿਆ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, इसनु सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है। और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनु मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहंदे ने, मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे, उन मन ले उलाई है, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने, तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है, तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है, मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, मैं नेड़े किस तरह आवा। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे, उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई सब कहने अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कुल हाथ ने, ना मेरे कुल पैर ने, ना मेरे कुल अखा ने, ना मेरे कुल कन है, ना मेरे कुल रसना है, ना मेरे कुल सोचनी है। हे गुरु, मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, चलना आ गया हे प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी तेज चलना आया, जिसने आज ही चलना सीखा तो किन्ना क चलेगा, एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने, सतगुरु तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहिंदे ने इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बांह पकड़ लेंदा है परमात्मा, बांह पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह महान झलक नु भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की ही अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, एक झलक है, पहला प्रकाश की है। अपनिया कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाने मनुख कदी उन्होंने अपने औगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नूं मनदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आखिया सी कतल कीता है, गुनाह कीता है, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज भी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता, किरत दिखाई देती है, पाप नहीं दिखाई देता। जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मनुख हुण गुनाह नूं किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, ये पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी। कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति विपाशक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पेंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पेंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती उनु प्रभु दी शक्ति किथे। जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते उसनु परमात्मा दा पुन प्रताप किथे। जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा वो चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा, कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जांदा है जिसने अखां दा ऑपरेशन कीता है, पट्टी खोली है मरीज दी, फिर उन्हें कहंदा आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलदा है तो डॉक्टर पूछदा है कुछ दिखाई देता, कहंदा हां अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे जाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पर्दे ने, कहंदा अंधेरा। डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदा ही है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे का भी बोध नहीं है। उसने कभी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कभी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे। कहने ने धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, ते कहन लगे तुसी मैनु बहुत अच्छे और प्यारे लगदे हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगलगीर करन नु जी करे, फिर कोई करन नु भी जी करता है, उस तो निछावर होने नु भी जी करता है, उस तो सदके होने नु भी जी करता है। सतगुरु कहने तेनों कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु दी संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, ऐ मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मैनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखा है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है। सतगुरु ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
4: Nanak Nanak.

0: सिद्ध नहीं होगा। महाराज जी ने अपने बेटे नु हथां च पकड़िया, इतिहास कहिंदा अपना सीस चुकाया। भाई बिधी चंद जी पुछदे ने, महाराज इस पुत्र नु इन्नी नीज नाल देखिया ते सतगुरु दे जिहड़े शब्द सन ओ ए सन, ए मेरा बेटा दीन रखक संकट हारन। कुछ विद्वान कहिंदे दीन बंधु, इहदा मतलब गरीबां दा रखवाला है, ते जितनी मर्जी वड्डी तो वड्डी मुसीबत आ जाए, सच एवे मेरा पुत्र वड्डे तो वड्डे संकट नूं विखार कर देवेगा। ते साडे मैं थोड़ी जी बेनती आप नूं करनी, खास करके सरदार कपूर सिंह होणा ने एक वारी जलंधर रेडियो ते एक लैक्चर दिता सी, है तां थोड़े दे मिंटां दा सी, ते मैं ओनू तां आधार बना रहा क्योंकि जिस विद्वान की खोज होवे भावे वह दुनिया तो चला भी जाए ओदा जिक्र जरूर करना चाहिदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी बारे शब्द कहे सन, ए संकट हरन दीन रखक। चलो ए शब्द तां ने साडे कोल हिस्ट्री दे, ते इस विच आ भी कह सकने आ भी कवि ने भावना नाल लिखिया होवे, पर जेड़े बचन आप जी रोज सवेरे शाम दुनिया भर विच जिथे भी सिख ने, गुरुद्वारियां विच घरां विच जिथे नेमी प्रेमी रोज अरदास करदे आ, गुरमुखो करोड़ा सरदालू रोजाना गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करदे आ, ते गुरु गोबिंद सिंह दो बचन कहिंदे आ कि एक मेरे पिता जी नूं, चलो ते शब्द उहनां तेग बहादुर वरत्या कि गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं कोई भी याद करेगा सब तो पहला उन्हां दी याद विच घर विच किसे चीज दी कमी नहीं, नौ निधा ने। दूसरी गल कि जिथे पिता जी नूं कोई याद करेगा पिता गुरदेव उहदी सहायता वास्ते जरूर पहुंचणगे। असीं रोज पाठ करने आ तेग बहादुर सिमरे, इहदा मतलब गुरु तेग बहादुर साहिब नूं चेते कीते आ। उंज मैनूं पता है नौनिध दे अर्थ गुरबाणी विच बड़े होर वी डूंघे, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, प्रभ का नाम शब्द वरत्या। हजूर सच्चे पातशाह जी ने इत्थे बचन कीता, कहन लगे ते थोड़ी आवाज घट कर, तेग बहादुर सिमरे घर नौनिध आवे ताए, ताए दर था पा समझने दौड़ के। पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं याद कोई करे घर नौ निधियां ता के आउंदियां ने, ते अगला बचन कीता सब थाई होए सहाय। जिथे भी कोई याद करद है गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हर थां ते सहायता करन वास्ते पहुंचदे। दास एक होर बेनती करे कि गुरु नानक साहब जी तो बाद जे दूर थोड़ा जा होर गया ते गुरु हरगोबिंद साहब, पर गुरु नानक साहब जिन्ना नहीं सफर, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इन्हां दा पूर्व रटन के जिन्हों आप पटना साहब ढाका असाम का जिक्र कर रहे। गुरु तेग बहादुर साहब की परवरिश अमृतसर की धरती ते शुरू हुई। उस दिन मैं एक बेनती की सी कि महाराज नूं सुते सिद्ध बचपन तो ही बैराग सी बिरहा सी, पर एक घटना ने उन्हां दी जिंदगी ते बहुत गहरा असर किया। वह घटना सी अपने वड्डे वीर बाबा अटल राय जी का चलाना, क्योंकि उन्हां दा चलाना श्री अमृतसर साहब की धरती ते होया। गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने कदी भी, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब, गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने कदी भी तीन पातशाह को जताया ही नहीं कि मैं वड्डा हाँ ते गद्दी दा वारस मैं हाँ। गुरु हरगोबिंद साहब दे बेटे ने, पर उन्होंने यह नहीं जताया कि मैं हर राय जी तो वड्डा हाँ। ने जो पिता गुरुदेव ने कह दिता कीरतपुर साहब रहा, ते इत्थे एक बार अर्ज की सी महाराज जी जदों भी संगत विच आउंदे सन एक ता नेत्र नीवे करके, क्योंकि साडे कोल इतिहास दीआं घटनावां ज्यादा उच्चा नहीं सन बोलदे, चंचल ताई कदे नहीं सी उहनां दे नेड़े आई।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੇ, ਤੈਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨ। ਯਾਤਰੀ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਈਏ ਤਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਖਾਸੀਅਤ। ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਜਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਬਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਨਿਮਿਆ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੜਾ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖੂਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਤਨ ਜੀਵਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਆਖਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ,
धन गोपाल धन गुरुदेव, हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग है, तेरे करके गोपाल दा पता चलता, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके, हे अन्न हे रोटी तुम ही पूजन योग है, धनता दे योग है, पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं ते दोवे नहीं चंगे लगते। कबीर खुद कहते ने भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे, एले अपनी माला। भूखिया भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी पूज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। ओ संत भी पूजनीक ने जिन्होंने इस असलियत नू समझे कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। तन रोटी है, ये बनिया रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। मैं एक दफा फिर दोहराना, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, रकत बिंद करने में आ तन किवें बनदा, लहू तो बिंद तो। ते लहू ते बिंद किवें बनदा, रोटी तो और किस तो बनदा, भोजन तो। ये तन रोटी तो बने, भोजन तो बना है। ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे ते, बिना भोजन तो जी भी नहीं सके। जीवन भर मनुख नू जड़ी प्रबल चिंता होंदी है रिजक दी, रोटी दी, ये भी मैज करते हैं, कशिश रोटी दी है। ओदा एक कारण भी है, पानी दी ते बारिश भी होंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं होंदी। पानी दे ते दरिया भी चलते हैं, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। पानी दे ते सरोवर भी होंदे, झीलां होंदियां ने, सागर है, रोटियां दे सागर कोई नहीं, रोटियां दे सरोवर कोई नहीं, रोटी लभनी पैंदी है। होर भी सुन लो, सतगुरु दी बाणी कहंदी है हर जगह रोटी नहीं है, जिथे रोटी है उथे जाके लभनी पैंदी है। हर जगह नहीं है, हर जगह मनुख दा रिजक नहीं पिया, जिथे है उथे जाके लभना पैंदा। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे, जिथे रिजक पिया जिथे रोटी पई है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे तहां खाने, नानका सच है। महाराज कहते ने यही एक सच्चाई है, जिथे रिजक पे है उथे ही जाके लभना पैंदा है, खाना पैंदा है, जाना पैंदा है। किरत की बांधी जग फिरे चित बंद न धीरा, रिजक खिची फिरदा है मनुख नूं सब जगह। मनुखता दी सारी भज दौड़, पंछियां दी सारी भज दौड़, पशुआं दी सारी भज दौड़ रिजक। शरीर दा भजना दौड़ना रिजक, रिजक भजाई फिरदा, रोटी भजाई फिरदी है। मैनू फिर कहण देना, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। रखत बिंद करने में आ, ये खून ते बिंद तो पैदा होया,
माखी रकत पिता बिंद दारा, मां दा लहू पिता दा बिंद किवें बनया रोटी तो, तन बनया रोटी तो, ये जीवेगा रोटी दे आसरे ते, सारी जिंदगी फिर मनुख रोटी लभदा ही रहिंदा, रिज़क ही लभदा। नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने, होर कुछ भी नहीं। मेरे पुत्र नूं मिलदी रहे, पोतरियां नूं मिलदी रहे, पड़पोतरियां नूं मिलदी रहे, रिज़क दी चिंता, रोटियां दी चिंता। तिजोरी विच सोने चांदी दा इकट्ठ, रोटियां दा इकट्ठ है, भविष्य दीआं रोटियां, अज दीआं नहीं, सत्तां पीढ़ियां दी। चिंता रोटी दी और कुछ भी नहीं। भावें सतपुरश गुरबाणी कहिंदी है, कोई होर चिंता तू करनी है ते कर ले, रिजक दी चिंता ना कर। ना कर चिंत, चिंता है करते। जिसने जीवन बनाया है, जगत बनाया है, रिजक दी चिंता ओ करेगा। तू उद्दम ते करना है, चिंता नहीं करनी। रिजक लबना ते है, चिंता नहीं करनी। ना कर चिंत, चिंता है करते। सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। देखो किसी दे घर मेहमान होइए ते घर वाले नूं सारी फिक्र करनी पैंदी, किथे ठहराना है, की खिलाना है, की पिलाना है, किस तरह दा इस दा इंतजाम करना है। ये सारा ब्रह्मंड परमात्मा दा घर है, असी उस दे जीव, उनू फिक्र है, उनू फिक्र है। वो साड़ी चिंता दे च है, असी उसका चिंतन करिए, बस इन्नी गल है। उन्हें साडे नाल संबंध जोड़िया होया है, सिर सिर रिजक संभा हेठा कर, काहे मन भव करिया। बिल्कुल चिंता करता है। ईरानी सूफी संत सादी ते इसनों होर बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान करता है। कहिंदे गमे रोजी माखुर, कोई गम तू करना है, चिंता करनी है, कर ले, पर रोटी दा गम ना करें, रिजक दा गम ना करें। गमे रोजी माखुर, मजन और आके दफ्तर रा, के पेशे अस्ति फल ए जद, कल को नद पस्ताने मादर रा। सादी कहिंदा है, बच्चे दा जन्म बाद दे चौंदा है, मां दे अस्तना दे च रिजक दुध पहले बन जाता है। के पेशे अस्ति फल ए जद, तिफल कहिंदे ने बच्चे दा, के पेशे अस्ति फल ए जद, कल कुनद पस्ताने मादर रा, मां दे पस्तान दे च, मां दे अस्तना दे च दुध पहले बन जाता है, बच्चे दा जन्म बाद दे च आंदा है। इत्थों तू शिक्षा क्यों नहीं लैंदा, रिजक पहले है, जीव बाद दे च है, जीवन बाद दे च है। गुरवाणी फिर इस तरह बयान कर दिए, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होंदा है, जंतु बाद दे च पैदा होंदा है, जीव बाद दे च पैदा होंदा है। गुरबाणी, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। मनुख नूं इस ते भरोसा नहीं आउंदा, इस गल ते भरोसा ना करना मानो परमात्मा ते भरोसा नहीं है, और वाकई परमात्मा ते भरोसा नहीं। पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहंदे ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तित मन प्रगटाया। तत्काल, तत् उसे वक्त, इधर भरोसा बज गया, इधर मनुख की समाधि लग जाती, लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है। तत् ज्ञान इस मन प्रगट आया, जाके हृदय विश्वास प्रभा आया।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਲਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕੀ ਡੋਲਦਾ? ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਡੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਡੋਲਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਦਾ ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਸ। ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਏ। ਸਾਰੀ ਤਾਮੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਲ ਕਰ। ਰੇਲਾਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ, ਲੱਭ ਲੈ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ, ਲੱਭ ਆਪਣੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਦਾਣੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਦੌੜ, ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਰੋਟੀ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਤਨ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੋਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ,
जमदियां ही मनुखी बच्चे दियां नजरां जो लभदियां ने यकीन जानो रिजक ही लभदियां ने, कुछ भी नहीं लभदी, रिजक लभदी। अस्तन मूंह दे च पै जांदा, खुश हो जांदा है, प्रसन्न हो जांदा है, रिजक मिल गया। अजे उसके हाथ रिजक कमा नहीं सकते, अजे उसके पैर रिजक तक पहुंच नहीं सकते। तो कुदरत ने नियम बनाया, अजे उसनों रिजक मिलता है मां के हाथों तो, अजे उसनों रोजे मिलती है मां तो। सहजे सहजे हाथ पैर काम करनगे, रिजक लभना पेगा, लभना पेगा। और रिजक हर जगह नहीं पिया, जिथे है उथे रिजक खिंच के लै जाएगा। जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। मन ने तन की संगत कर ली है तो मन भी समझद मेरी भी लोड़ रोटी है, कथा ही नहीं, कथा ही नहीं। पेट भर जाता है, मन तो भरदा ही नहीं, तन ते त्रिपत हो जाता है। खांदे दो रोटियां नहीं, चार खा लेंगे, छह ख्याल त्रिपत हो गया, मन ते त्रिपत होंदा। सुनदे होवे कोई कईयां कोल, और कईयां ने मैनू कहा ज्ञानी जी की करिए, पेट ते भर गया, मन नहीं भरिया। स्वाद है, रस है, हुण तन दी लोड़ ते है ने, भुख ते है ने। तन दी लोड़ नूं मन ने अपनी लोड़ बना लिया, तो फिर की आउंदा, खाई जांदा, खाई जांदा। मन की भुख तो मिटदी नहीं, नहीं मिटती। बहुत सारे मुल्कां दा अज मसला हो गया ओवर ईटिंग, जरूरत तो ज्यादा खाना मसला खड़ा हो गया। और साडे देश दे आयुर्वेद आचार्य इंज कहा करदे सन, आहार रोग आहार चिकित्सा। खाना पीना रोग है, खाना पीना अमृत है, खाना पीना जहर है, खाना पीना दारू है। क्यों ऐसा क्यों कह देता है? भूख है, खाना पीना अमृत है। एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ा नु पूरा करेगी। भूख नहीं है, हुण एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं 90% आहार रोग, खाने पीने तो रोग पैदा होंगे। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है। खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान किया, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे? निकम्मे चकरा च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर हुण होर खाई जांदा, भुख ते है नहीं। दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई, गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने। मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिर। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, खा रहे है, एक एक बुरकी रोग होवेगी, एक एक बुरकी जहर बनेंगे, एक बुरकी शरीर दे अनर्थ पैदा करेगी। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नु रोगी बनाएगा, मन नु विकारी बनाएगा। शक्ति अदक बनेगी, उदी लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है।
पर भुलेखे करके तन दियां लोड़ां नूं मन ने अपनी लोड़ समझ ले तो उहदे नाल की आउंदा है। तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं है, वो की नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहने, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें कट्ठे रहेंगे, लोभ ते पाप दोहे कट्ठे रहेंगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ां करके मनुख भ्रष्ट नहीं आंदा, लोभ करके आंदा। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनियां लोड़ां ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं आंदा, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह रही है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने, सगल सृष्टि को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी दा दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नूं जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो, भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया। फिर तू किस तो बनया, कहो कबीर ए राम की अंश। तू ते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है, जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। एक कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकदा है तो फिर लंगर पानी दी कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं आउंदी। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप कोई तन दियां लोड़ां नूं पूरा नहीं करदा। इस चक्कर च ना पैणा, इह मन वास्ते, इह मन वास्ते। भोजन मेरे सामने पिया, पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ा, भाव बुरकी नूं मूंह च ना पावां, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़दा। यकीन जानो, बाणी पढ़द्या आया भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़दा रहे बाणी। कहिंदे ने, मैनू मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने। मैं कि तेरा चेहरा ते दसदा पे एक पंक्ति भी नहीं तेरे मन ने सुनी। उसे तरह ही सोग दे चें, चिंता दे चें, हंकार दे चें, विकार दे चें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन मेरे सामने पे है, मैं बुरकी मुंह च नहीं पाई। चलो मुंह च भी पा ली है, स्वाद आ गया सर, पर मैं थले नहीं की थी, कंठ तो थले नहीं की थी। भुख नहीं मिटेगी, भुख नहीं मिटेगी। एक एक बुरकी ही अंदर जाएगी, भुख बाहर आएगा। मन दी भुख ये भोजन नहीं है।
जन्म तो तन दे अंदर रोटी दी भुख है, भोजन दी भुख है। जन्म तो शरीर दे ना मन विच भजन दी भुख नहीं है, इतनी मर्ज करा नहीं है। विद्वान इंज भी कहंदे ने जेदे अंदर हर वक्त भोजन दी भुख है, भुख तो मुराद है भिखारी, हर वक्त मनुख भिखारी है। पर किसे मन दे अंदर भजन दी भुख पैदा हो जाए, सिर्फ भुख, बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, शहन शाहां दा शहन शाह हो जाता है। इनू मैं दूजे नुक्ते नाल बयान करा। संसार दे मार्ग ते चल के बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए, अखीर दे च पता चलता है कख नहीं मिले, कुछ भी नहीं, हथ खाली है। निरंकार दे मार्ग ते चल के, धर्म दे मार्ग ते चल के जे कुछ नहीं भी प्राप्त होया, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। नहीं परमात्मा मिलया, परमात्मा दी प्यास मिल गई है, उदी तड़प मिल गई है, उदी भुख मिल गई है। भगतां ने इसते भी शुकराना किया। पता है क्यों? किसे मनुख नूं भोगन भुख ही ना लगे भोजन दी तन दे तल ते, तो आयुर्वेद आचार्य कहंदे ने तन रोगी है, रोगी बीमार। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होया, 36 प्रकार का भोजन परोस के उसके अगों रखे, कहंदा नहीं मैनू भुख नहीं है। अगले कहंदे ने 4 दिन का तू कुछ खादा नहीं, मंजे ते पिया, खा, कमजोर होंदा जा रहे हैं। वैद कहंदे ने खा, कहंदा भुख नहीं है। इतना जोर दा ताप उन्हें भुख नूं मार दिता है, भुख दे ताप नूं दबा दिता है। फिर जस उसनों प्रेरदिया नहीं खा, नहीं तो शरीर निडाल होवेगा, कमजोर होवेगा। वो खांदा है, कहंदा स्वाद नहीं। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, आयुर्वेद आचार्य कहंदे सारी जबान स्वाद नहीं मानती, कोई थोड़े जिहा तंतु ने जबान दे च ओ रस लैंदे ने। ओ बारीक तंतु जोर दे बुखार करके कमजोर हो जांदे ने, शिथिल हो जांदे, रस लैण दी उन्हां च समर्था नहीं रह जांदी, कम नहीं करदे। तो बंदे नूं भोजन दा स्वाद नहीं आउंदा, जदके है स्वाद ही। जो तंतु स्वाद माण सकदे ने ओ रोगी हो गए ने, रोग करके कमजोर हो गए ने, शिथिल हो गए ने, स्वाद नहीं आउंदा। कहिंदा स्वाद नहीं है, भुख दा ना लगना ते स्वाद दा ना आउना, इस गल दी पहचान है तन रोगी बीमार है। हुण दूसरा पहलू, जिस मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है, नाम दी भुख नहीं है, मन रोगी है, रोगी है। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया है जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं, लगदी नहीं। किधरे एक दिन रोटी नहीं खाधी, सौं नूं दसदा फिरदा अज ते मैं खा, रोटी खाण दी वेल नहीं मिली, नहीं खाधी, अज ते भुखे रह गए। घर वाले भी चिंता करदे ने, महीना महीना नितनेम नहीं कीता, गुरुद्वारे नहीं आया, जप नहीं कीता। ना घर वालियां नूं अफसोस, ना इहनूं अफसोस, क्यों? ना घर वालियां नूं भुख लगदी है भजन दी, ना इस नूं लगदी। घर वाले भी रोगी, ए भी रोगी। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पै जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं। महाराज कहंदे सारे ही रोगी ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। ते रोगी दी पहचान की होवेगी, खुद फैसला कर लेना
ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਮੁਨਸਬ ਸੁਧ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਔਗਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਖੂਬੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਤਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਆਈ ਦੋਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ ਤੋ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ

आखिर इस दे अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। पर बदकिस्मती मनुख अपने नेड़े आउंदा ही नहीं। इस वास्ते शेख सादी साहब कहिंदे तेरे बारे दूसरे का फैसला गलत होवेगा। दूसरा की जानता तेरे की विचार में, तू की सोचता रहना। यही जो मैं अर्ज कर दिया, 100% लोग दूजिया बारे गलत फैसले करते, गलत फैसले करते। ये पापी है, ये पुन्नी है, ये तो कहण मात्र गल्लां होणी। पर महाराज कहिंदे ने कहण मात्र खेड नहीं है। पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जा। जो असी करदे हां, जिस कर्म दे च मन आउंदा है, वो अंदर लिखिया जांदा है, उसे वक्त लिखिया जांदा, संस्कार बन जांदा है। जिस कर्म दे च मेरा मन है, उस कर्म दे संस्कार बन जांदे ने। जिस कर्म दे च मेरा मन नहीं है, उहदे संस्कार नहीं बनदे, अंदर लिखिया नहीं जांदा। चोरी अंदर लिखी जांदी है, क्यों? उहदे च मेरा पूरा मन आउंदा है, समाज दा डर है, कानून दा डर है, बाणी दा पाठ मेरे अंदर नहीं लिखिया जांदा। ना मेरी सावधानी आउंदी है, ना मेरी एकाग्रता आउंदी है, ना समाज दा डर, ना कानून दा डर। किसी भी शुभ कर्म के अंदर संस्कार नहीं बनते, बुरे कर्मां दे बनते, क्योंकि बुरे कर्म नो मनुख पूरे मन नाल करता है। समाज का डर है, कानून का डर है, शुभ कर्म नो मनुख पूरे मन नाल नहीं करता। हर एक कह देंदा की करिए, मन ते जुड़दा ही नहीं। पर जब तू झूठ बोलदा है, उहदे च पूरा मन आउंदा है। जब तू किसी नू ठगदा है, उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है। जब तू किसी नू धोखा देना, उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है। जब जेब कतरा किसी की जेब कटदा, उहदे च पूरा उसका मन आउंदा है। बड़ी भारी एकाग्रता आउंदी। किसी जेब कतरे ने नहीं आख्या, जेब कटन लग्या मैं एकाग्र किवें आऊंगा। किसी डकैत ने नहीं आख्या, डाका डालन लग्या मैं अपना मन एकाग्र किवें करा, एकाग्र हो जांदा। हर अभ्यासी ने आख्या, हर सत्संगी ने आख्या कि करिए, मन ते जुड़दा ही नहीं, मन ते एकाग्र ही नहीं आता। कारण क्यों नहीं एकाग्र आता? ना समाज का डर, ना कानून का डर। तो परमात्मा का डर बंदा मने ना, तो गल खत्म। सारी जिंदगी कर्म कांड चलता रहेगा, होगा कुछ भी। ते पता है कर्म कांड किसनों कहते ने? जिस विच मन पूरा नहीं है, नहीं है। यह भी मैं अर्ज करता, पूरी भावना है, पूरा मन है, हर कर्म भक्ति हो जाता है, भगवान नाल जोड़ देता है। कोई मन नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई यकसोई नहीं है, यह तो कर्म कांड चलता रहता है। कर्म कांड जन्म तो तन दे अंदर भोजन दी भुख है, मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। कारण मन रोगी है, इस जन्म दा नहीं, अनंत जन्मां तो, अनंत जन्मां तो रोगी है और बेहोश है, अचेत है, भुख नहीं है। ये जिहड़ा वाहिगुरु वाहिगुरु का जप है, थोड़ा इसनों सुचेत करना है तो किधरे इस दे अंदर भुख पैदा हो जाए। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। जैसे मनुख पूरी एकाग्रता नाल वाहिगुरु कहिंदा है, वाहिगुरु का अंदर संस्कार बन जाता है। तो जैसे वाहिगुरु का संस्कार बनता है अंदर, विकारा दे बने अंदर संस्कार वो मिटते हैं, खत्म होते। ये दोवें कट्ठे नहीं रह सकते, या नाम का संस्कार रहेगा या काम का संस्कार रहेगा, या सबर संतोख का संस्कार रहेगा या लोभ का रहेगा, दोवें कट्ठे नहीं रहते, एक दूजे नूं मिटा देंदे ने। यह भी मैं अर्ज करते, संतोख और नाम एकाग्रता दे नाल ना जपया ना पढ़िया बाणी नो, तो विकारा दे संस्कार बनते जाणगे। कर कर करना लिख ले जा। जिहड़ा कम असी पूरे मन नाल करदे अंदर लिखिया जांदा, अनर्थ अंदर